0: कैट, कैट माने बिल्ली।
1: आर ए टी रैट, रैट माने चूहा।
0: सी ए टी कैट, कैट माने चूहा।

G-O-A-T, goat. Goat माने बकरी. L-I-O-N, lion. Lion माने शेर. अरे दिल है तेरे पंजे में तो क्या हुआ?